0: सब स्वास्थ्य संस्थान में यहाँ कुष्ठ रोग के दवाई निशुल्क मिलत है।
1: समय में यहाँ उपचार यानी दवाई कहे से कुष्ठ रोग पूर्ण रूप में यहाँ नीक होए के साथ शारीरिक अपांगता होए से भी बच सका जात है।
0: जानकारी रहक चाहिए कुष्ठ रोग बीमारी से प्रभावित और उनके परिवार के यहाँ भेदभाव करब कानूनी अपराध हो। साइनिंग अस्पताल INF नेपाल बाके द्वारा जनहित में जारी संदेश।
2: नेपालगंज का लागि सुपर स्पेशलिटी विशेषज्ञ सेवा सहित आएको छ शिखर हेल्थकेयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर प्राली। हाम्रा सेवाहरू अनुभवी तथा विशेषज्ञ चिकित्सकको साथमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार र परामर्श। गम्भीर मृगौला रोग, डायलिसिस व्यवस्थापन, मृगौला संक्रमण, पत्थरीको निदान तथा उपचार, सुगर र उच्च रक्तचापको उपचार व्यवस्थापन तथा मृगौला प्रत्यारोपण तयारी र निगरानीको लागि पश्चिम नेपालमा एकमात्र DM नेफ्रोलोजिस्ट डाक्टर सौरभ सिंह हमाल। एपेन्डिक्स, पित्त थैली, आन्द्रा, कलेजो सम्बन्धी समस्याको उपचार तथा दूरबीनबाट अपरेशन सेवा, पेटको क्यान्सरको शल्यक्रिया र इन्डोस्कोपी कोलोनोस्कोपी जाँचका लागि शिक्षण अस्पताल महाराजगंजबाट आउनुभएको MCH ग्यास्ट्रो तथा हेपाटोबिलियरी सर्जन डाक्टर प्रदीप थापा। नवजात शिशु तथा बाल रोगको उपचारको लागि कान्ति बाल अस्पताल काठमाडौँमा पूर्व कार्यरत डाक्टर प्रतिमा खड्का। प्रसूति तथा स्त्री रोगको उपचार तथा शल्यक्रियाका लागि शिक्षण अस्पताल महाराजगंजबाट आउनुभएकी डाक्टर प्रेरणा मल्लिक। साथै गुणस्तरीय प्रयोगशाला, इन्डोस्कोपी जाँच, ECG, EEG, NCV, एक्सरे तथा भिडियो एक्सरे जाँचका साथै सम्पूर्ण किसिमका स्वास्थ्य समस्याहरूको विशेषज्ञ डाक्टरबाट गुणस्तरीय उपचार र परामर्शको सुविधा रहेको छ। सम्पर्क शिखर हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर प्राली, भेरी अस्पताल अगाडि रामलीला मैदान जाने बाटो, रोयल क्याफे भएको बिल्डिङ, नेपालगंज। सम्पर्क फोन नम्बर 081-530-220 र 98-41-586-979 081-530-220 र 98-41-579।
3: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ।
4: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.

0: कृषि क्षेत्र में यहाँ व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में यहाँ कार्यान्वयन न कई सके कारण से हम लोग निजी और सरकारी सब सरोकार वाला लोग एकजुट हो के अपन अपन भूमिका निर्वाह संबंध में सहकार और प्रयास करावा जाए
1: तब आवश्यक सलाह और जानकारी के खातिर नेरे के संघीय तथा प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा उपलब्ध करावे वाले कार्यालय केंद्र प्रयोगशाला निर्देशनालय और स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में यहाँ संपर्क रखे खातिर अनुरोध करा जाता है। कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तथा तालीम केंद्र खजुरा बांके।
2: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाख को बीमा तिरेको संपूर्ण प्रीमियम फिर्ता सूर्य ज्योति सही प्लान
3: सूर्य ज्योति लाइफ इंश्योरेंस जीवन को लागी।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 12 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील

0: कैसे घर लूं।
1: वात्सल्य हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक, सुर्खेत रोड, नेपालगंज। सम्पर्क 98025 32568।
2: नेपालकै एकमात्र अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगञ्जमा। सन् 2016 डाक्टर लियोनार्ड लिङ्को फाउन्डेसनद्वारा बेस्ट डाक्टर अवार्डद्वारा सम्मानित डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठ, एनएमसी 19393, बीडीएस दिल्ली, एफएजीसी मणिपाल, सर्टिफाइड इम्प्लान्ट एन्ड लेजर डेन्टिस्ट्री अमेरिका, सर्टिफाइड बोटक्स एन्ड फिलर स्पेसलिस्ट युरोप, एडभान्स सर्टिफिकेट इन जेनरल डेन्टिस्ट्री क्यानाडा, मिनी रेजिडेन्सी इन इन्डो डेन्टिक्स साउथ कोरिया। यी विभिन्न देशहरूमा अध्ययन गरेका डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठद्वारा

0: ए तपाईँले आफूले प्रयोग गर्ने तोरीको तेलको शुद्धता चेक गर्नु भएको छ? तोरीको तेलको क्वालिटी तपाईँ आफै चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति तेल आफ्नो हातमा लगाई बाँच्न सक्नुहोस्। शुद्ध तोरीको तेलमा नेचुरल राग सधैँ आउँछ र त्यो नेचुरल राग धारा शुद्ध तोरीको तेलमा सधैँ आइरहन्छ। हो, तपाईँले पनि तेलको क्वालिटी आफै चेक गर्न सक्नुहुन्छ। याद राख्नुहोस्, सबै तेल धारा तोरीको तेल जस्तै शुद्ध चाहिँ नहुन सक्छ। विगत 3 दशकदेखि नेपालीको मुटुलाई स्वस्थ बनाउँदै नेपालको पहिलो एनएस चिन्ह प्राप्त शुद्ध तोरीको तेल धारा। मुटु चाहिन्छ मुटु
1: होइन कौशल्य मेमोरियल अस्पताल, यही थियो त।
2: ओहो बाजे, अब उता आइन, ठ्याक्कै यता हेर्नुहोस् त, पूर्वपट्टि।
3: हाम्रा सेवाहरू: इन्टरनल मेडिसिन तथा फ्यामिली फिजिसियन सेवा, हार्ट जोड्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ सेवा, नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ सेवा, प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा, नवजात शिशु तथा बाल रोग विशेषज्ञ सेवा, छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ सेवा, दाँत बङ्गारा तथा मुख सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा, एकुपंक्चर तथा फिजियोथेरापी सेवा, 24 घण्टा रोड एक्सिडेन्ट इमर्जेन्सी सेवा, 24 घण्टा ल्याब एक्सरे र ख वर्गको एम्बुलेन्स सेवा, एयर कन्डिसन इमर्जेन्सी वार्ड, स्ट्यान्डर्ड वार्ड तथा क्याबिनहरू।
4: हजुर, कौशल्या मेमोरियल अस्पताल, कोहलपुर नगरपालिका, वडा नम्बर 9, हलदारपुर बाँके। सम्पर्क नम्बर 0184140007 र 98482639।
5: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाखको बिमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता। सूर्य ज्योति सही प्लान,
6: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवनको लागि।
7: व्यावसायिक कृषि पद्धति अप्नाएकला किसान हुक्रन कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तालिम केन्द्र खजुरा बाँकेके विशेष अनुरोध।
8: कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक पद्धति अप्नाई हो आयमूलक व्यवसाय से आत्मनिर्भर बनी हो बनाई। कृषि पेसा है मर्यादित बनाएक उद्यमशीलता विकास कई के रोजगारी सृजना करी हो कराई।
7: कृषि व्यवसायमा तुलनात्मक विश्लेषण कैके आमदानी ऐना व्यवसाय छनौट गरी, खेती व्यवसायके नियमित हर हिसाब राखके विश्लेषण कैना बानी बैठाई,
8: बजार हेरके खाली उत्पादन योजना बनाई, व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तयार कैके लागू करी,
7: सफल उद्यमी बनियो व्यवसाय है निरन्तरता दि आगे बढाई हो बढाइक लगाई। कृषि प्राविधिक विज्ञ हुकरन से नियमित सरसलाह हो सुझाव ली वो उहे बमोजिम व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करी ओ कराई। एकल प्रयास से कृषि क्षेत्र में व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में करे निसेकना हुईले ओहर से हमरे निजी व सरकारी सब सरकार वाला एकजुट होके अपन अपन भूमिका निर्वाह कैके समन्वय सहकारिक लाग प्रयास करी वो कराई।
8: थप आवश्यक सरसल्लाह वो जानकारी के लाग लगभग संघे वो प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा देना कार्यालय, केन्द्र, प्रयोगशाला, निर्देशनालय वो स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में संपर्क करे लाग अनुरोध बा।
7: कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तालिम केन्द्र खजुरा बाँके।
9: बीर डेंटल
10: नेपालगंज शहर में संचालित अत्याधुनिक सुविधा संपन्न बीर डेंटल में दाँत तथा मुख संबंधी संपूर्ण उपचार काठमाडौं तथा भेरी अंचल अस्पताल का अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आर के लामिछाने द्वारा उपचार गरिन्छ।
11: डाक्टर लामिछाने द्वारा गरिने विशेष उपचारहरू: दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत आउने, पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्र तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
10: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक, भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
11: फोन नम्बर 081-532-375।
12: ओहो आज डाई नै मजा लागत हो, मजा से दवाई करेला कहटो।
13: ए तो ओकर लाग कान्ति आरोग्य अस्पताल जाइ न, पश्चिम नेपाल के अनुभवी व उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफार कैना डाक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यह कान्ति आरोग्य अस्पताल नेपालगंज में मिलत।
12: ए बात तो ठीक कहलो, साच्चिकी अस्पतालमा काका सुविधा मिलत त
9: उहाँ त 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा दैनिक ओपीडी सेवा दूरबीन ओ लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया जरल घाव उपचार करना संगे एनआईसीयू पीआईसीयू आईसीयू हाईटेक अपरेशन थिएटर हो सुरक्षित प्रसूति सेवा फे उहाँ पा जाइत छोट बच्चा हो भर्खर जन्मल बच्चन के सामान्य से लैके जटिल रोग संगे सकु प्रकार के रोग के उपचार फे उहाँ कई जाइत
12: ए ओसिनो कला से उहाँ जाई मन फे ढुक्क हुना चाहल रह
9: हो तो स्वास्थ्य हेरचाह कहले ठीक ठाउँ रोजना हो कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज सक्कुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा सम्पर्क नम्बर 081-535-717 कान्ति आरोग्य अस्पताल अपने हुकरनके स्वास्थ्य हमारी स्नेहा

0: आसानी से भुगतानी प्राप्त करा जाए। नेपाल पे QR, नेपाल का अपने QR।
1: ओहो आज दाई हाँ नहीं मजा लागत हो मजा से दवाई करे ना कहतो
2: ये तो ओकर लाग कांति आरोग्य अस्पताल जाई ना पश्चिम नेपाल के अनुभवी व उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफार कैना डॉक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यह कांति आरोग्य अस्पताल नेपालगंज में मिलत।
1: ए बात तो ठीक कहलो साची की अस्पताल में का सुविधा मिलत त
2: वहां ता 24 घंटा इमरजेंसी सेवा दैनिक ओपीडी सेवा दूरबीन और लेजर परविधि से शल्यक्रिया जरल घाव उपचार करना संगे NICU PICU ICU हाईटेक ऑपरेशन थिएटर हो सुरक्षित प्रसूति सेवा फे वहां पा जाए। छोट बच्चा हो भरखर जन्मल बच्चन के सामान्य से लेके जटिल रोग संगे सबको प्रकार के रोग के उपचार फे वहां कई जाए।
1: ए ओसी नो कल से वहां जाए मन फे ढुक्क हुईना चाहल रह
2: हो तो स्वास्थ्य हेरचाह कहले ठीक ठाउँ रोजना हो। कांति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज सक्कुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा सम्पर्क नम्बर 081-535-717। कांति आरोग्य अस्पताल अपने हुकरन के स्वास्थ्य हमारी स्नेहा।
3: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाख को बीमा तिरेको सम्पूर्ण प्रीमियम फिर्ता सूर्य ज्योति सही प्लान
4: सूर्य ज्योति लाइफ इंश्योरेंस जीवन को लागी।
1: कान के समस्या बा उपचार करायला कहाँ ले जिना हो
2: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र मा जाई ना वहां ता अनुभवी चिकित्सक को वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक से हरेक दिन कान के परीक्षण हुई उत्तराखेल कहाँ हो वहां तो लंबा समय से कान पकती रहना जीर्ण रोग काने ढूसी कान खजोइना कान कम सुनना कान दम्मा होइना विटामिन के उपचार और परामर्श वो लंबा समय से कान पकती रहले कान के जालिम पाल परल कान हड्डी खैना रोग के ऑपरेशन कई के उपचार हुई वाकर संगे कान कम सुनना विटामिन के लाग कान में लगाइना सस्ता और महंगा ढेर प्रकार के कान के मशीन विटामिन के रोजाई अनुसार के उपलब्ध थे करा जाए जस्ते BTE CIC RIC जैसी मशीन फे वहां मिलत।
1: ए ओसिड हो कल से बुडू हो वहां ले जाके उपचार करेले से वजह से सुन से कही त
2: एकदम समय में उपचार करेले से उपचार संभव बा बागेश्वरी स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बाके संचालक पूरन चौधरी संपर्क नंबर 98-84-20-697 98-85-23-697 वो 98-014-83-697। बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में सहभागी हुई नियमित कान के जांच करी।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक एक बजे को छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
2: मानसिक स्वास्थ्य समस्याका लक्षणहरू
3: डर लाग्नु निद्रा नलाग्नु
2: अनौठा विचार आउनु
3: निराशा बढ्नु खुसी नहुनु
2: कुनै कुरा
3: निराशा बढ्नु खुसी नहुनु
2: कुनै कुरा

0: toilet bunny, yeah.
1: Extreme energy drink.
2: मुन्तारा इङ्ग्लिस मिडियम हाई स्कुल नेपालगञ्ज बीच राजामा नयाँ शैक्षिक सत्र 2083 का लागि भर्ना खुल्यो। वैशाख 8 गते हुने प्रवेश परीक्षामा प्रथम द्वितीय र तृतीय हुने विद्यार्थीलाई क्रमशः 75%, 50% र 25% छात्रवृत्तिको सुविधा छ। आजै सहभागी हुनुहोस्। विशेषताहरू: अनुभवी तथा दक्ष शिक्षक टोली भएको प्रविधि मैत्री शिक्षा साइन्स र म्याथ ल्याब, बाल मैत्री वातावरण भएको, अतिरिक्त क्रियाकलापमा विशेष जोड, सुरक्षित र अनुशासित वातावरण भएको। आजै आफ्नो सिट सुरक्षित गर्नुहोस्।
3: सम्पर्क फोन नम्बर 98 84 46 291।
2: मुन्तारा इङ्ग्लिस मिडियम हाई स्कुल नेपालगञ्ज बीच राजा।
4: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
5: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाऊ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में हो ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में हो छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
4: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो?
5: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98 84 20 697, 98 85 23 697 और 98 014 83 697।
4: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस तेज
1: काकी पाए लागी
2: खुश रहो भैया खुश रहो
1: आ रेडियो लिए घूमत हो
2: अरे इमा कोई प्रोग्राम हुआ सुने मारे रेडियो वाले बैठे हैं ना और का भैया
3: ए सैया मिले लर कैया में का करू
1: तो काकी तू नहीं जाना तो हम किरौमिया कार्यक्रम चना जोर गरम लेके आई थे किसी सार एफएम से दिन के 1 बजे।
2: अरे वाह भैया ये तो बहुत बढ़िया बात होगा। अब तो हम जाए थे सब गौवा मैया सबका बतेबे और सब जगह बतेबे कि चना जोर गरम आवत है कृषि सार एफएम 94 मेगाहर्ट्ज से दोपहर के 1 बजे से। और हाँ भैया सुनो ना यहू बतेबे किरौमिया जी के साथ

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस तेज
1: हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे है हमका प्यार हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे है हमका प्यार कार्यक्रम चना जोर गरम सुनने वाले सब यार दोस्त का प्यार भरा सलाम और नमस्कार। हाँ तो सुरता ही प्यारा से कार्यक्रम चना जोर गरम लेके आप लोगों के दुकान मकान खेत खरियान डाड़ पहाड़ देश विदेश यानी हर जगह पर हम संचालक मियाँ जी प्रायदिन में जो सदा साथी रहे हैं आज भी हमरे चंदा जी। हाँ तो सुरताई माँ लगी पे लगाओ तकदीर का आजमाओ जीता जाए प्रेज और ज्योति टेलर से ले जाओ। तो साथी आज फिल्मी दुनिया के बारे में है जैसे सिंगर के हम नाम पूछब फिल्म के नाम पूछब गायककार को गावा कौन गाना हो तो का आप लोग एकदम सही उत्तर दिया जाए तो इसके कारण आप लोग एकदम नंबर में जुड़ा जाए सुने कैसी 415 125 के लिए नेपाल के साथी नेपाल से बाहर के साथी 00970 81 415 125 के लाइन में आओ जी। ये कार्यक्रम आपके प्रिय रेडियो किसी सारे एफएम 94 मेगाहर्ट्ज के तरंग से जो 1 बजे से 3 बजे तक रहता है ये कार्यक्रम दैनिक कार्यक्रम है जानो सातों दिन छहों दिन के कार्यक्रम है साथी। जैसे ही माँ बीफे के सोमवार के जो कार्यक्रम हम ले के आए थे और इतवार के मंगल के बुध के चंदा जी चलावत हैं 5 कार्यक्रम होगा और जो संध्या जी और चंदा जी शनिवार के आप लोगों का कार्यक्रम चलाओ के एकदम मनोरंजन करावत हैं एकदम कार्यक्रम तो सातों छः कार्यक्रम होंगे साथी। तो ये कार्यक्रम दैनिक कार्यक्रम है आप लोग 1 बजे से 3 बजे तक रोज कार्यक्रम का सुना जाए कहे से माँ हर विषय के हर मेर के कार्यक्रम आवत है। तो साथी माँ आज हम क्वेश्चन रखा है जैसे पहला नंबर माँ है आने से उसके आए बाहर जाने से उसके जाए बाहर बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा कौन फिल्म हो कौन गायक लोग ये गाना का गायन है। इसे 2 नंबर में गाना है साथ छोड़ू ना तेरा चाहे दुनिया हो खफा ये है मेरा फैसला क्या है तेरा फैसला ओ रब्बा। हाँ तो साथी दोनों गाना के गायककार के नाम फिल्म सब सही बताओ जी बताओ ले साथी का पुरस्कार टीचर दिया जी कहाँ से दिया जी का आप लोगों का बताई था आपके माना जाना हुआ ज्योति टेलर जो सदर लाइन में है जहाँ कुशल कारीगर द्वारा हर मेर के लेडीज जेंट्स अड्डा पिस कोट पैंट कुर्ता सलवार सफारी सूट दौरा सलवार सब मेर के कपड़ा सेट हैं वहाँ से आपका पुरस्कार टी शर्ट दिया जाए। तो साथी ऐसे आप लोग आज मैसेज भी भेजा जाए 98 55 96 3 6 में मैसेज भी भेजा जाए फ़ोन भी किया जी सुनने कैसी 415 122 के लाइन में आज अवधी हिंदी भोजपुरी भक्ति भजन नाथ कव्वाली जो भी गाना है आज एकदम आप लोगन के यहाँ सुने का मिली कहे से आज है सम्मार। हाँ बीफे के दिन में हम आपका कव्वाली के अलावा नाच के अलावा कोई चीज़ न सुना पेबे कहे से आप लोगों का भी बता दिया है तो कि बीफे के आप लोग अपने मन पसंद के नाच कव्वाली चॉइस करके बैठा जी जो भी कहा जी अगर हमरे सही नाम पता आप लिख बताओ जी तो हम आपके मुँह के मांगा तुरंत तत्काल में सुनेबे। और आज के दिन में तो आज तो आप जो भी अवधी हिंदी भोजपुरी भक्ति भजन नाथ कव्वाली यानी सामाजिक गाना अभी नहीं कि अब बहुत मेर के गाना है जो गाना हम यहाँ से आपके रेडियो तक पहुँचाए ना पाई वीडियो ऑडियो दोनों चलत है कैसे माँ ऑडियो वीडियो दोनों देखा जाते किसी सारे फेम सर्च किया जाए हमरे लोगन के माँ पूरे स्टाफ का आप प्रोग्राम चलावत न्यूज़ पढ़ात हर मेर के सब चीज़ विषय वस्तु के कार्यकर्ता लोगन का इमा संचालक लोगन का देखा जाए तो ऑडियो में तो रेडियो में आवाज़ जाए। तो साथ ही इसे सुना कैसी 415 122 के लाइन में आवाज़ आए ऐसे मैसेज भेजे वाले हैं मुबारक खां जो सऊदी से मैसेज भेजे हैं कि नेपाल के ठिकाना है खजुरा गाँव पालिका वार्ड नंबर 5 रजनवा मगर आजकल सऊदी में है कहने कि मियाँ साहब हमका कव्वाली सुना दो जाओ ये हाजियो दरबारे मदीना देखो। हाँ ठीक है मैं आपका सुने कहने हमरे नेपाल के जो बाके जिला में रह वाले जो रजनवा में हमरे अब्बू हैं महमूद खां हैं सनेन खां हैं बैदू हैं गोमती बनिया हैं और कहने कि तमाम साथी लोगन का सुनाओ चाहिए खजुरा बाजार में रह वाले सुरेश सोनी के यहाँ और तमाम साथी लोगन का सुनाओ चाहिए। तो साथी आप लोग भी नंबर में जुड़ा जाए सुने कैसी 415 122 के लाइन में आओ जी। तो बोले हम चली थे पहले छोटा सा व्यापारी विज्ञापन के बाद ना सुना जी कव्वाली आओ ये हाज ये दरबारे मदीना देखो

0: रुपे क्यूआर नेपाल का अपने क्यूआर
1: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाख को बीमा तिरेको सम्पूर्ण प्रीमियम फिर्ता सूर्य ज्योति सही प्लान
2: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स जीवन को लागी।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस तेज।
1: मोहतरम हजरात, अभी आपने सुना कि एक हाजी जब हज बैतुल्लाह के सारे अरकान अदा कर लेता है और उसके बाद जब वो हाजी कहलाने का मुस्तहिक हो जाता है, उसके बाद वो आकाए नामदार ताजदार मदीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार मुकद्दस की ज्यारत के लिए जब मदीने जाता है तो मदीने में उसको क्या क्या देखना है और कहां कहां जाना है, मदीने की अजमत क्या है, आइए इस एल्बम के बी साइड में हम आपको अजमत मदीना बता रहे हैं। चार मिसरे पेश खिदमत है, मुलायदा फरमाएं।

हज अदा हो गया तो करके तवाफे आखिर चल दिए हाजी मदीने की जियारत के लिए किबलतैन और कुबा और वहाँ की सारी मस्जिदें तुमको बुलाती हैं इबादत के लिए। कैसे?

0: हाँ तो सुरताई सुनागा प्यारा से कवाली, कवाली बहुत बढ़िया रहा है। जाओ ये हाजी दरबारी मदीना देखो। खैर कवाली जो आप लोगन के समझ में बहुत अच्छा रहा है, जो हमरे तमाम जो हमरे देश विदेश के साथी लोग, हमरे तमाम देश विदेश के हमरे मुस्लिम भाई लोग जो हज यात्रा का गए हैं, उनके उपलब्ध के कवाली रहा है। हाँ तो साथी ऐसे आप लोग नंबर में जुड़ा जाए, सुने कैसी 415-122 के लाइन में आवा जाए। नेपाल के साथी, नेपाल से बाहर के साथी 00970-81-415-122 के लाइन में आवा जी। हाँ तो साथी आज के कार्यक्रम जो आप लोगन के घर अंगना दुकान मकान खेत खरियान दाड़ पहाड़ देश विदेश यानी हर जगह पर चलत है आप के प्रिय रेडियो किसी सारे FM 94 MHz से। तो साथी पहला नंबर में गाना है, हाँ आप लोग एकदम ध्यान से सुना जाए। पहला नंबर में गाना है, गाना आप लोग ध्यान से, आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। कौन फिल्म हो कौन गायक लोग ही गाना का गाए नहीं से। दो नंबर में गाना है, साथ छोड़ू ना तेरा चाहे दुनिया हो खफा, ये है मेरा फैसला क्या है तेरा फैसला ओ रब्बा। हाँ तो साथी दोनों का सही उत्तर दिया जी, उत्तर दे वाले साथी का कार्यक्रम में पुरस्कार एकदम आप लोगन के यहाँ हंसी खुशी के साथ माँ लाखों करोड़ों के बीच माँ टी शर्ट दिया जाए ज्योति टेलर जो आप लोगन के माना जाना हुआ नेपालगंज वार्ड नंबर 4 सदर लाइन में है, जहाँ सब मेल के कपड़ा सेते हैं वहाँ से आपका टी शर्ट दिया जाए। तो साथी ऐसे मैसेज भी आएगा है, मैसेज भेजे वाले हैं बशीर से, एक मैसेज भेजे नहीं है लिखी नहीं। सबसे पहले मियाँ जी आपका पूरे रेडियो परिवार का प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम, तो वालेकुम अस्सलाम। ऐसे कहने के आपके कार्यक्रम बहुत अच्छा लागत है, आपके कार्यक्रम में यह जितना भी तारीफ किया जाए उतने कम है। कहने हमका गाना भोजपुरी गाना सुना दिया जाए, कोई भी अपने मन पसंद के भोजपुरी गाना सुना दिया जाए। ठीक है हम भोजपुरी गाना आपका जरूर सुनेब। और कहने के हमका बशीर कहके चिन्हे जाने वाले सब लोगन का सुनावा चाहते है। ऐसे संगम टेलर से जो मैसेज भेजी है, मैसेज भेजे वाले हैं कृष्णा परियार जी, इन्हों लिखी नहीं। सबसे पहले मियाँ जी आपका पूरे रेडियो परिवार का प्यार भरा 10 अंगुरी जोड़ के नमस्कार, तो हमारे तरफ से 20 अंगुरी जोड़ के नमस्कार है कृष्णा जी। ये कहने के हमों का प्यारा से कोई गाना अपने मन पसंद के सुना दिया जी। साथी हैं सुभाष परियार हैं, मोहम्मद अफरोज हैं, ऐसे शिशिर चौधरी हैं, तमाम साथी लोगन का सुनावा चाहिए हैं। ऐसे दोसर मैसेज आवा है, मैसेज भेजे वाले साथी हैं लिखिने। सबसे पहले मियाँ जी आपका पूरे रेडियो परिवार का प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम, तो वालेकुम अस्सलाम। इनके ठिकाना पता है लिखे वाले हैं जयसपुर वार्ड नंबर 4 शिव मंदिर चौराहा से जो मैसेज भेजे हैं अमर लाल सोनी जी। कहने कि कोई प्यारा से गाना सुना दिया जी। ठीक है हम आपका प्यारा से गाना सुना दे भाई। कोई साथी हमारे फोन लाइन में, उनका स्वागत कैली पहले। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: हाँ आपके नाम?
1: मोतीलाल।
0: मोतीलाल जी।
1: हाँ।
0: तो और सब ठीक है?
1: बहुत बढ़िया है दादा, बहुत बढ़िया है, आराम से पहुँचे द्वार कार्यक्रम।
0: अच्छा ठीक है, सुना जाए बस यही हमारे तरफ से गुंजाइश है कि हमारे श्रोता आराम से पहुड़ के सुने तो और बढ़िया है ना मोतीलाल जी। हाँ तो सब ठीक ठाक है?
1: सब ठीक है ठाक है, तनी गाना सुना दे तुम्हें।
0: कौन गाना?
1: अरे वो बढ़िया फोन किए हैं चंदा जी का, तो गलो ना सुना है हमका।
0: कौन गाना?
1: अरे ये फूल दो माली सुन के ओके गरीब की यही दुआ है औलाद वालों।
0: ओ बताई नेट नहीं रहा है ना?
1: अच्छा।
0: तो नेट ना रही तो का करो, अपने फाइल में जत्ता गाना वत्ते भर में नहीं बजाई।
1: अच्छा, तो
0: भूखे गरीब का यही दुआ है औलाद वाले फूलो फलो आए। अरे मैंने कभी आपके लोगन के मांगा मानता हम लोग ठुकरावा गा है। हाँ हाँ हाँ।
1: और दूसरा जो है जमाना दीवाना फिल्म है, उमा जो है उदित नारायण और सपना अवस्थी की आवाज है।
0: उदित नारायण और
1: सपना अवस्थी
0: और जने हैं?
1: हाँ हाँ सपना अवस्थी है और उदित नारायण,
0: दो इन जने हैं।
1: हाँ।
0: अच्छा तो ठीक है, तो लास्ट में हम बताइए ना।
1: सुनो ना।
0: हाँ ठीक है ठीक है। अब तो अब सिख बजे वाला गाना सुनाइ हो की काकी का भद्रा सिंह सिरपाली तो कूदे लाग हुई गम गम कूदत हुई कि हमार मोतीलाल नाम ले ली हैं। अच्छा उनके कारण आए। अच्छा अब हम जान गए तेरे कत्ता मोहब्बत है। ठीक है भैया दादा का टठिया मियाँ जी का भुइयम दे देती तो जानी तो का गर्मी हो रहा है जी जब पिजरा आएगी तब ले हो। हाँ सतुआ ले आओ दही ले आओ। ठीक है ठीक है नमस्कार। हाँ साथी मोतीलाल जी रहे हैं जो ये हमरे बाकी गांव से तो साथी ऐसे सुने कैसे 415 एक से बैज के लाइन में आप लोग आवाज आए कैसे कार्यक्रम में यहाँ जो आप लोग एकदम आंसर के उत्तर सही दिया जी तो सही दे वाले साथी के यहाँ पुरस्कार टी शर्ट दिया जी। कहाँ से दिया जी का आप लोगन का बताए थे ज्योति टेलर जो सदर लाइन में है वार्ड नंबर 4 में। तो साथी तनी हमरे जो अमन लाल सी मैसेज पठाना कहना इन्हों कहना है हमका भोजपुरी गाना सुनाए दिया जी अपने मन के तो भोजपुरी के गाना कोई भी गाना ठीक है हम गाना सुनाए देवे भोजपुरी। और इनके साथी रघुनाथपुर के अशोक सोनी कुड़वा के ओमकार ना सोनी प्रेम लाल आरती पूजा जी ज्योति गीता और कहने मियाँ जी चंदा जी पवन जी पूरे रेडियो परिवार रेडियो सुनने वाले जितने श्रोता ऑडियो वीडियो देखा सुना था सब लोगों का धन्यवाद है आपका अमर लाल जी। तो हम चली थे पहले छोटा सा व्यापारी विज्ञापन विज्ञापन के बाद में सुना जी आप लोग प्यारा से भोजपुरी गाना उसके बाद में सुना जी जो हम मोतीलाल के गाना है भूखे गरीब का यही दुआ है उसके बाद में ये गाना सुना जी।
2: ओहो हामी बिरामी भएपछि कहाँ जाने त
3: तपाईलाई थाहा छैन नेपालगञ्जको शीतलनगर 10 त्रिशक्ति मन्दिरको सामुन्ने खुलेको छ नि चौधरी सरकार बक्स पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक प्राली
2: हो र त्यहाँ सुविधाहरू के रहेछ त
3: एउटै छातामुनि विभिन्न सेवाहरू रहेको छ नि जस्तै डाक्टर संकेत रिसाल फिजिसियन एवं पेट तथा कलेजो रोग विशेषज्ञ डाक्टर उर्मिला पराजुली रिसाल स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर आरके झा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर दिनेश कुमार चौधरी नाक कान घाँटी एवं टाउको रोग विशेषज्ञ प्रेक्षा सिंह चौधरी एकुपंक्चर पद्धतिबाट ठीक हुने रोगहरू हात खुट्टा नचल्ने मुख बाङ्गो हुने बाथ रोग ढाड दुख्ने मूर्छा पर्ने र नसा सम्बन्धी सबै रोगहरूको उपचार गरिन्छ।
2: अनकल सेवाहरू
3: नवजात तथा बाल रोग विशेषज्ञ मृगौला तथा मूत्र रोग विशेषज्ञ हाड जोड्नी अर्थोपेडिक सर्जन तथा नसा रोग विशेषज्ञ प्याकेजमा हेल्थ जाँच गर्ने सुविधा पनि रहेको छ। प्याथोलोजी भिडियो एक्सरे डिजिटल एक्सरे ईसीजी कानको सुन्ने शक्ति थाहा पाउनको लागि अडियोग्रामका साथै रगत दिशा पिसाब खकार थाइराइड बायोप्सी कल्चरका एवं सबै प्रकारको हार्मोनको जाँच गरिनुको साथै औषधि सुविधा पनि उपलब्ध रहेको छ।
4: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म दिउँसो 3:30 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म डाक्टर दिनेश कुमार चौधरी नाक कान घाँटी यौन टाउको रोग विशेषज्ञ बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म दिउँसो 3:30 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म शनिबार बिहान 8:30 बजेदेखि दिउँसो 1 बजेसम्म
3: सम्पर्क फोन नम्बर 081-533-719 98-480-22-229 र 98-605-22-229।

0: California. Extreme energy drink.
1: Beer Dental.
2: नेपालगञ्ज शहरमा सञ्चालित अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न बीर डेन्टलमा दाँत तथा मुख सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार काठमाडौँ तथा भेरी अञ्चल अस्पतालका अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आरके लामिछानेद्वारा उपचार गरिन्छ।
3: डाक्टर लामिछानेद्वारा गरिने विशेष उपचारहरू: दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेँलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्रा तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
2: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
3: फोन नम्बर 081-532-375। नेपालकै एकमात्र अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगञ्जमा। सन् 2016 डाक्टर लियोनार्ड लिङ्को फाउन्डेसनद्वारा बेस्ट डाक्टर अवार्डद्वारा सम्मानित डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठ, एनएमसी 19393, बिडिएस दिल्ली, एफएजिसी मणिपाल, सर्टिफाइड इम्प्लान्ट एन्ड लेजर डेन्टिस्ट्री अमेरिका, सर्टिफाइड बोटक्स एन्ड फिलर स्पेसलिस्ट युरोप, एडभान्स सर्टिफिकेट इन जेनरल डेन्टिस्ट्री क्यानाडा, मिनी रेजिडेन्सी इन इन्डो डेन्टिक्स साउथ कोरिया, यी विभिन्न देशहरूमा अध्ययन गरेका डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठद्वारा उपचार गरिने अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगञ्जमा।
2: विशेषताहरू: दुखेको दाँतहरू जराबाट नै भरेर नदुख्ने बनाउने, बच्चाहरूको दुखेको दाँत जराबाट भर्ने, किरा लागेको दाँतलाई भर्ने, दाँत निकाल्ने, दाँतमा खोल लगाउने र दाँत नभएको ठाउँमा दाँत हाल्ने, मेटल क्राउन, बाङ्गो दाँतलाई तार बाँधेर सिधा गर्ने, वृद्ध अवस्थामा भएको बुढाबुढीको पुरा दाँतको सेट लगाउने, दाँतलाई प्रत्यारोपण गर्ने, चाउरी परेको अनुहारलाई राम्रो पार्ने, आँखा तल खाल्टो भएकोलाई भर्ने, सबै उपचारहरू दूरबिनबाट गरिने, डिजिटल एक्सरे सेवा।
0: सम्पर्क गणपति क्लिनिक, सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज नर्सिङ होम नजिकै कुसुम पेट्रोल पम्पको सामुन्ने, पासङलाम रोड जाने बाटोमा। फोन नम्बर 081-531-366 र 98-085-49-451।
4: दैनिक रु 197 रु 50 लाखको बिमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता। सूर्य ज्योति सही प्लान,
5: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवनको लागि।
6: नेपालगञ्जका लागि सुपर स्पेशियालिटी विशेषज्ञ सेवा सहित आएको छ शिखर हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर प्राली। हाम्रा सेवाहरू अनुभवी तथा विशेषज्ञ चिकित्सकको साथमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार र परामर्श, गम्भीर मृगौला रोग, डायलिसिस व्यवस्थापन, मृगौला संक्रमण, पत्थरीको निदान तथा उपचार, सुगर र उच्च रक्तचापको उपचार व्यवस्थापन तथा मृगौला प्रत्यारोपण तयारी र निगरानीको लागि पश्चिम नेपालमा एकमात्र डिएम नेफ्रोलोजिस्ट डाक्टर सौरभ सिंह हमाल। एपेन्डिक्स, पित्त थैली, आन्द्रा, कलेजो सम्बन्धी समस्याको उपचार तथा दूरबिनबाट अपरेसन सेवा, पेटको क्यान्सरको शल्यक्रिया र इन्डोस्कोपी कोलोनोस्कोपी जाँचका लागि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जबाट आउनुभएको एमसिएच ग्यास्ट्रो तथा हेपाटोबिलियरी सर्जन डाक्टर प्रदीप थापा। नवजात शिशु तथा बाल रोगको उपचारको लागि कान्ति बाल अस्पताल काठमाडौँमा पूर्व कार्यरत डाक्टर प्रतिमा खड्का। प्रसूति तथा स्त्री रोगको उपचार तथा शल्यक्रियाका लागि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जबाट आउनुभएकी डाक्टर प्रेरणा मल्लिक। साथै गुणस्तरीय प्रयोगशाला, इन्डोस्कोपी जाँच, इसिजी, इइजी, एनसिभी, एक्सरे तथा भिडियो एक्सरे जाँचका साथै सम्पूर्ण किसिमका स्वास्थ्य समस्याहरूको विशेषज्ञ डाक्टरबाट गुणस्तरीय उपचार र परामर्शको सुविधा रहेको छ। सम्पर्क शिखर हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर प्राली, भेरी अस्पताल अगाडि रामलीला मैदान जाने बाटो, रोयल क्याफे भएको बिल्डिङ, नेपालगञ्ज। सम्पर्क फोन नम्बर 081-530-220 र 98-41-586-979। 081-530-220 र 98-41-586-979।
7: आगामी शैक्षिक सत्रका लागि नर्सरीदेखि कक्षा 9 भर्ना खुल्यो।
8: अनुभवी तथा दक्ष शिक्षक मार्फत विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासमा जोड दिँदै आइरहेको होप इन्टरनेसनल एकाडेमीमा नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि भर्ना खुल्यो। नेपालगञ्जमा विगत 23 वर्षदेखि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको यस विद्यालयमा सुविधा सम्पन्न कम्प्युटर ल्याब, पुस्तकालय तथा आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला, प्रोजेक्टर मार्फत अध्यापन हुने कक्षा कोठा र सेमिनार हलका साथै विद्यार्थीको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै छात्र छात्राका लागि सुरक्षित छात्रवास, जेनेरेटर तथा चिसो तातो पानीको व्यवस्था समेत छ। फुटसल, क्रिकेट, भलिबल, बास्केटबल र ब्याडमिन्टन जस्ता खेल मैदानको व्यवस्था हुनुका साथै जेहन्दार तथा योग्य विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था समेत गरिएको छ।
7: यहाँ यातायातको पनि व्यवस्था रहेको छ।
8: होप इन्टरनेसनल एकेडेमी, गुणस्तरीय शिक्षाको भरपर्दो आधार।
7: थप जानकारीका लागि सम्पर्क 081551462, 98584462 र 98582645।
9: हाय रे दिदिया, हमार टिहुनी बहुत पीरा थे, बहुत दवाई कराए डाले, नाय ठीक आते।
10: सुनो बहनी, खुशी के खबर, कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में यहाँ मूत्र और दिल गुर्दा रोग के सब ऑपरेशन दूरबीन प्रविधि के द्वारा किया जाता है। और हुआ पेट संबंधी सब मेर के दवाई, पित्त थैली के पथरी, अपेंडिस, हार्निया, हाइड्रोसील, बवासीर, फीसर भगंदर जस पुरुष लोगन में यहाँ लिंग, ब्रिये और अंडकोश और मर्दांगनी की कमी हुए समस्या साथेन कैंसर संबंधी सब दवाई ऑपरेशन किया जाता है। और जाना थियो हाथ गोड़ कर यहाँ रीढ़, टिहुनी पिराप, झंझनाहट हो, नस पिराप, झमझमाप, हड्डी टूट फूट भवा है तो दवाई और ऑपरेशन के साथ हैं प्लास्टर बांधा जाता है। महिला लोगन में यहाँ सफेद पानी बहाव, महीनावारी में यहाँ गड़बड़ी, निसंतानता, गर्भवती लोगन के नियमित चेक जांच, बच्चेदानी और स्त्री रोगन के सब मेर के दवाई के साथ हैं ऑपरेशन किया जाता है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
11: डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता, कंसल्टेंट सर्जन, यूरो सर्जन, जनरल कैंसर, मूत्र रोग तथा मृगौला रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर राहुल मिश्रा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, हार्ट जोड़नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ।
10: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, सुर्खेत रोड, आदर्श नगर, नेपालगंज 10, बांके, वन कार्यालय के नेरेन, पेट्रोल पंप के पछुए। संपर्क नंबर 081551।
12: अम्मा के दवाई करावे के है, लेकिन समझ में नहीं आवत है कि कौन अस्पताल में ले जाए।
13: कांति आरोग्य अस्पताल है, ये है, काहे चिंता लेत हो। पश्चिम नेपाल के अनुभवी और उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सक द्वारा विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा भी यहाँ उपलब्ध है।
12: ए, अच्छा, माने अस्पताल में यहाँ कौन कौन सुविधा है? तो
13: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा, दैनिक ओपीडी सेवा, दूरबीन और लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया, जले घाव के उपचार करे साथ NICU, PICU, ICU, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर, सुरक्षित प्रसूति सेवा, बाल बालिका और नवजात बच्चन के सामान्य रोग से लेके जटिल रोग तक सब मेर के उपचार भी उपलब्ध है।
12: अस है तो अम्मा के यहाँ आज लेके जाये थे कांति आरोग्य अस्पताल में। यहाँ
13: कांति आरोग्य अस्पताल, सुर्खेत रोड, नेपालगंज, सब मेर के उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एक छत के नीचे। संपर्क नंबर 081551717।

0: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई।
1: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाऊ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जात है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
0: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
1: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र प्राली नेपालगंज फुलटेग्रा आर्मी बैरक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98480-2697, 98580-2697 और 98014-83697।
0: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस्तेज
1: हाँ तो श्रोता प्यारा से गाना सुना गा और खैर बहुत अच्छा लाग हुई। तो साथी आज के कार्यक्रम जो आप लोगन के घर अंगना दुकान मकान खेत खरियान डाड़ पहाड़ देश विदेश हर जगह पर आप के प्रिय रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज जो चलत है कार्यक्रम जो आप लोगन के चना जोर गरम कहते मेरा चना बना है आला जिसमें डाला गरम मसाला उसको खाएगा दिलवाला तगड़ा बनके होगा घोड़ा गर्दन पकड़ के मैंने मड़ोरा डंडा मार के उसको छोड़ा चना जोर गरम। हाँ तो साथी चना जोर गरम जो कार्यक्रम है आपके 1 बजे से 3 बजे तक रहा है। तो साथी ऐसे सुनने 81415 के लाइन नेपाल के साथी अजी नेपाल के लाहिर के साथी 00970-81415-122 के लाइन में आवाजी। हाँ तो इसे आप लोगन के पठवा मैसेज जो तमाम है मैसेज भी भेजा जी 98155-96-306 में मैसेज भेजा जी। अपने छोटकरी में पता ठिकाना लिखा जी गाना के बोल लिखा जी चौधरी हिंदी भोजपुरी भक्ति भजन नाथ कवाली जो भी आपके दिल में सामाजिक गाना जो समाज में हम लोग पठे सका जाए। तो साथी कार्यक्रम जो आपके प्रिय रेडियो किसी सारे फेम 94 मेगाहर्ट्ज़ से 1 बजे से 3 बजे तक रहा है। जैसे बीफे के सम्मार के कार्यक्रम हमारे रहते तो बीफे के कवाली नाथ से कार्यक्रम रहते सोमवार के कार्यक्रम में सब मेर के गाना आपके मिसमा संगीत है यानी सब मेर के गबड़ा है अवधी हिंदी भोजपुरी भक्ति भजन नाथ कवाली जो भी आप फरमाइश किया जी और मैसेज में लिख के पठाओ जी। वो ऐसे कार्यक्रम जो ये आवत है बीफे के और सोमवार के फिर मंगल के बुध के चंदा जी कार्यक्रम चलावत हैं फिर इतवार के चंदा जी चलावत हैं शनिवार के संध्या जी और चंदा जी चलावत हैं। साथ ही अब कार्यक्रम आप लोगन के पूरा मांगा मुराद पूरा होएगा है। अब हम चली थे पहले 2 बजे के टेम चेक के बाद में आप हम फिर मिला जी सुनते रह जी रेडियो किसी सारे फिल्म के साथ ही रह जी यार वार ना जावा जी।
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 2 बजे को छ।
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।
4: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज डाइनिंग जस्ट सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे रहा है कहाँ जाई तो ठीक रही तनी बताई दियो हमका।
5: सुना जाए आपका हम बताई थे आप नेपालगंज में यहाँ अपने घर के खातिर ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब प्राली में यहाँ जावा जाए। हुआ पर यहाँ आर्डर के अनुसार बेड सोफा डाइनिंग टेबल ऑफिस टेबल ड्रेसिंग टेबल दराज जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है। उके साथन टिकाऊ सामान आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथन बनावा भी जात है।
4: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथन आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जात है।
5: एक दफे सेवा करे मौका दीन जाए संपर्क के खातिर सुरखेत रोड नेपालगंज बाके संपर्क नंबर 98-44-88-35-75 और 98-08-25-40-37।
6: नींद ना आए हमको हाए जग सोता है।
7: नमस्कार स्वयंसेविका दीदी।
8: नमस्कार नमस्कार। दुई जीव को भएपछि स्वास्थ्य चौकी गएर जाँच गराइरहेकी त छौ नि।
9: स्वास्थ्य चौकी त म लगिहाल्छु नि दीदी इनले गाह्रो माने पनि लान्छु नि।
8: कस्तो राम्रो यस्तो भएपछि सुख शान्तिले घर खोज्दै आइहाल्छ नि।
7: स्वास्थ्य चौकीमा हामीलाई गर्भवतीले दुध फलफुल सागसब्जी अन्डा माछा मासु खानुपर्छ यस्ता पोसिलो खानेकुराले आमा र बच्चाको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ भन्नुभएको छ।
8: हो त
7: बच्चाको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ भन्नुभएको छ।
8: हो त

0: हाँ तो श्रोता छोटा सा व्यापारी विज्ञापन, 2 बजे के टेम चेक, टेम चेक के बाद मैं सुनागा गाना साथ छोड़ू ना तेरा, चाहे दुनिया हो खपा ये है मेरा फैसला, क्या है तेरा फैसला ओ रब्बा। खैर गाना भी अच्छा रहा है तो साथी ऐसे नंबर में आवाज़ आए सुनने 81415 के लाइन नेपाल के साथी आओ जी, नेपाल से बाहर के साथी 00970 81415 के लाइन में हमारे देश विदेश के साथी आवाज ही कहे से आज के गाना है, आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, कौन फिल्म हो कौन गायक लोग ही गाना का गायन है। ऐसे 2 नंबर में गाना है साथ छोड़ू ना तेरा, चाहे दुनिया हो खपा ये है मेरा फैसला, क्या है तेरा फैसला ओ रब्बा, कौन फिल्म हो कौन गायक लोग गायन है। कोई साथी हमारे फोन लाइन में आए हैं, देखी है कि गए। हाँ तो साथी हमारे श्रोता कोई आए रहें फोन लाइन में, देखी है कि गए। नमस्कार।
1: हेलो।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार साहेब,
0: आपके नाम?
1: हमारा नाम गंगाराम रैदास।
0: गंगाराम रैदास कहाँ से?
1: जानकी गांव पालका 5 गुरुआ गांव।
0: और गंगाराम
1: ठीक है साहेब? अपन सुनाओ का हाल चाल है?
0: बस बढ़िया है, बहुत दिन पर आज बातचीत होत है।
1: हाँ बहुत दिन पर होत है साहेब, लगावा करित रहन लगते ना रहा फोन होय जों।
0: तही है करबले पर हो?
1: हाँ करबले पर ही हूँ।
0: क्यों हुआ गाँव में?
1: ना करबले पर हम भेड़ी चराई थे जो।
0: भेड़ी?
1: हाँ साहेब भेड़ी पाले हैं।
0: सही कर है भेड़ी?
1: हाँ साहेब हैं लगभग 80-85।
0: अरे तब तो एक मिला के चरावीन खवा बजावे भरे खाए।
1: हाँ चराई थे साहेब, लिए डंडा आपसे गाना सुनी थे जो।
0: अच्छा गंगाराम जी।
1: हाँ साहेब।
0: जैसे हम गायक कार फिल्म के नाम पूछा बतावा जाए, कौन फिल्म हुए कौन गायक लोग गाना गाए नहीं?
1: अरे साहेब ये सब हम नहीं जानी थे, अब सुने के जानी थे आप लोगों।
0: हाँ?
1: अब नहीं जानी थे तो का बताई?
0: तो वही वाली हाल, गाय गई भैंस भैंस गई जबदा गंगाराम गए भेड़ी चरावे। है नहीं?
1: हाँ
0: ठीक है, नहीं जाना का तो झूठ साझ बक्क्यों फायदा नहीं है, है नहीं?
1: हाँ का फायदा है।
0: तो अब से बजे वाला गाना है भूखे गरीब का यही दुआ है, औलाद वाले फूलो फलो जैसे आपके भेड़ी फूले फले।
1: हाँ तो यही सुनाए दो और का औलाद वाला।
0: हाँ कहे से अब से जब भेड़ी बच्चा दे तो एक बच्चा हम दे दियो।
1: हाँ ठीक है साहेब ले जाए जो।
0: खरिहानी जानो और मियाँ बाभन का? हाँ, तो हाँ, मियाँ बाभन का तो दिए जात है।
1: हाँ दिया तो जात है।
0: अल्लाह उमा भला ना करी है?
1: करी है करी
0: है नहीं?
1: हाँ।
0: तो ठीक है गाना सुनाई हो किका किका?
1: ये गाना सबसे पहले आपका।
0: हाँ धन्यवाद।
1: और जो हमारे श्रोता सुनत है ये FM सबका।
0: रेडियो सुने तो पूरे विश्व में जात है ना, आइडियो वीडियो सब आइडियो भी आइडियो सुना तो वीडियो लगावा करो, रेडियो किसी सारे FM लिखाओ।
1: हाँ
0: हमका लोगन का पूरा वीडियो में पही हो बोलत बतवात।
1: अच्छा अच्छा।
0: हाँ तो वही तो कहा जाता है कार्यक्रम आइडियो वीडियो सब चलत है। ठीक है ठीक है गंगाराम जी, अगले कार्यक्रम में फिर आवाज आई। नमस्कार
1: नमस्कार नमस्कार।
0: हाँ साथी जानकी गांव पालिका गुरुआ गांव से रहे गंगाराम रैदास जी, से खेते में यहाँ अपने कृषक काम में बाजे हैं यानी भेड़ी रखे हैं, उन्हीं का चराव बजाव थे भाई, उनके सेवा तो करही पड़ी। तो इसे आप लोग सुने कैसी 81415 के लाइन में एकदम आवाज़ आए, नेपाल के साथी नेपाल से बाहर के साथी 00970 81415 के लाइन में आवाज़ ही। ऐसे ही मैसेज भेजे वाले साथी हैं लिखी ने, सबसे पहले मियाँ जी आपका पूरे रेडियो परिवार का प्यार भरा नमस्कार। तो नमस्कार है, ये मैसेज भेजी नहीं है मस्तराम पाठक जो खजुरा रोड धम्भोजी पान के दुकान से, इन्हों लिखी ने मियाँ जी आपके कार्यक्रम बहुत अच्छा लागत है, हमका गाना सुनाए दिया जाए, बहुत हम आपसे अनुरोध करी थे कि पिंजड़े में पोपट बोले मेरे सीने। हाँ तो ठीक है, कोई साथी हमरे आएगी उनका स्वागत कर ली। नमस्कार
2: मियाँ जी। राम राम अस्सलाम वालेकुम।
0: राम राम वालेकुम अस्सलाम, आपके नाम?
2: बस घनश्याम पाठक आपके पुराने यार।
0: कहाँ चले गए रहो घनश्याम?
2: अरे मियाँ जी भूल गयो सब रास्ता बाट घर कुरिया सब कुछ भूल गयो, मनेक भूल गयो है
0: आए?
2: मने सबका भूल गयो, यहाँ तो हाल चाल ना ले थो कि हाँ हाल चाल ले ली का हाल है।
0: हाँ तो मोबाइल हराएगा रहा नंबर नहीं रहेगा तो का करी?
2: हाँ तुम्हार सब तुम तो ना हेराने रहो।
0: नहीं नहीं हम तो ना हेराने रहन।
2: और घर हमारे हेराई जा रहा है, घर से रास्ता भूल गए रहो।
0: अब तू कहूँ चले गए हो गांव छोड़ के, कहा थे बाहर, अब वहाँ
2: कहा गांव छोड़ के चले गए हन।
0: कहूँ बतावत रहो तू ही कि हम बहुत दूर बनावा है घर।
2: अरे एक किलोमीटर दूर बनावा है तो यहाँ घर कोई न कोई तो रहता है।
0: अच्छा तो ठीक है भाई भाई, कोनो दिन हम मैडम जी दोनों जने आवा जाए ना।
2: मिया जी हम दोनों हाथे बनाए थे, तुम काल ही चले आओ।
0: नहीं काल है ना, आई मिली कैसे, आई मिली तो सूख के आई मिली।
2: अच्छा कोई तो अभी कार्यक्रम का हम लोग जब बीचे में बंद हो गया रहा, उसके बाद में जो है कुछ जारी नहीं मिला कि कार्यक्रम कौन कौन कार्यक्रम चला था,
0: सब चल सब कार्यक्रम चल गए एक बजे से तीन बजे तक सब कार्यक्रम।
2: अच्छा
0: हाँ ऐसे बीच में काम रहा है पाठक जी ना, तो अब उमा ऐसा काम तो करे ही पर का
2: तो
0: अपन सुरतन के यहाँ अपने जाल जाल में दो चार प्रोग्राम से फंसाए रहन कि भागे नहीं वही वाली हाल डिब्बिन चिराग बुझाए जा तब तो सब अंधेरे हो जात।
2: तो वही चक्कर में जो है कार्यक्रम बीच बंद रखवा
0: हाँ, जैसे कार्यक्रम आज के कार्यक्रम में आप जौन मन पसंद के गाना सुनो, अवधि हिंदी भोजपुरी भक्ति भजन नाथ कव्वाली जौन तुम्हारे मन में हो वो गाना सुन सका जाता है। क्वेश्चन है जिमा क्वेश्चन के उत्तर दिया जाए, पुरस्कार भी है। और जैसे काल कार्यक्रम बुध है ना, वो मंगल है
2: आज सोमवार है
0: नहीं काल काल
2: हाँ काल मंगल
0: काल कार्यक्रम चंदा जी का है, परो बुध है
2: हाँ।
0: बुध के कार्यक्रम चंदा जी का है, बीफे के फिर हमार कार्यक्रम है जिमा आपका एंसर लगेबे एंसर के उत्तर दिया जाए उके ओहम पुरस्कार है। उमा आपके कव्वाली ना तो गैरा से कार्यक्रम ज्वाइंट है
2: और तो आपके आपके कौन कौन दिन कार्यक्रम है?
0: अब हम चले थे बीफे के सम्मार के
2: दीपे और सम्मार के
0: चंदा जी चलाओ थे इतवार के मंगल के बुध के।
2: अच्छा
0: पाँच होएगा
2: हाँ।
0: शनिचर के संध्या जी चंदा जी चलावत हैं।
2: अच्छा
0: छा होएगा
2: हाँ।
0: सुख के सबके विदा।
2: अच्छा सुख के
0: हाँ मैंने और कार्यक्रम है तो मैंने विदा है तो अब सातों हाँ, हफ्ता हफ्ता पूरा पेक होएगा कि नहीं होएगा
2: हाँ।
0: आप चाहे चाहे अंगनम नाचो चाहे भितरे व सर्वम नाचो चाहे बरठो चाहे जाए नौके घरम नाचो
2: जहाँ तुम्हारा मन हुए
0: हाय
2: जहाँ तुम्हारा मन हुए
0: हाँ ठीक है। इबे इबे कोनो दिन हमार नंबर आपके थी तो है ये है
2: हाँ, वही चाहिए जहाँ
0: हाँ तो अब हमरे में फोन करे हो ना बा हाँ हम नंबर ले ले हम आईबे कोनो टाइम
2: तो एक बाजी नंबर वा अपन दे हो ना
0: तब नंबर इमा मैसी तो बताए थे 98-55-96-3-6
2: रुके रहो
0: 98-55-96-93-6 हाँ
2: 306
0: हाँ। लड़कियन से लिखवा लियो वहाँ मैसेज पठाई दिया के बस सब आई जी ठीक है महाराज। हाँ रे महाराज गए तो साथी आवाज जाए तो कर्म जारी रहते हैं। तो साथी अब हम चली थे छोटा सा व्यापारी विज्ञापन, विज्ञापन के बाद ना सुना जाए भूखे गरीब का यही दुआ है औलाद वाले फूलो फलो।
3: अब सुनोस श्री स्टील्स रेडियो कथा तेसरो तथा अंतिम भाग। शर्मा जी को घर लाई भूकंप ले हल्लाई रहे कुछ झ्याल बाहर धूलो ने ढाक बत्ती फोन सबको लाइन काटे सब धेरे डराएका हुन्छन् तर एकछिनमा भूकम्प रोकिन्छ। शर्माजीले श्री FE550D ले बनाएको घरलाई फेरि केही भएको हुँदैन अनि त्यसपछि शर्माजीको परिवारको जिन्दगी ढुक्कले चल्न थाल्छ अनि वर्षौँ पछि फेरि एक दिन ठुलो भूकम्प आउँछ। श्री FE550D सर्वोत्कृष्ट भूकम्प प्रतिरोधक स्टील।
4: सुन्नु न यो हाम्रो बिहे पछिको पहिलो यात्रा हो सिर्फ हामी दुईजनाका लागि
5: हो त। हात समातेर हिँड्दा संसार अझ सुन्दर लाग्छ, कतै विशेष प्याकेजमा घुम्न जान पाए झन् कति राम्रो हुन्थ्यो, कहाँ होला र त्यस्तो सुविधा खोइ।
4: किन चिन्ता लिएको नि हजुरले, न तयारीको झन्झट न कहाँ बस्ने अनि कहाँ खाने भन्ने चिन्ता, घुम्ने रुटको सबै व्यवस्था छ। घरदेखि लिएर फेरि घरसम्मै पुर्याइदिने व्यवस्था छ, मात्र नेपालगञ्ज न्यू रोड स्थित तुलसी होलिडेजमा। हजुरलाई थाहा थिएन र यो कुरा? मलाई त धेरै पलदेखि थाहा थियो नि।
5: कति बाठी, बिहानको सूर्य, साँझको मिठो हावा, आहा, तुलसी होलिडेजको विशेष प्याकेजमा सस्तो मूल्यमा घुम्न पाउने भएपछि हाम्रो यो यात्रा निकै मिठो अनि रमणीय हुने भयो। उसो भए यात्रा आजै सुरु गरौँ न त। तुलसी होलिडेज टुर्स एन्ड ट्राभल्ससँग आजका लागि मात्र होइन, सधैँका लागि सम्झनै पर्ने नाम रहेछ।
4: हजुर, स्वदेश होस् या विदेश, तपाईँ जहाँ जुन देश जान चाहनुहुन्छ, टिकट बुकिङदेखि भिजासम्म, होटल बसाई र सम्पूर्ण व्यवस्थापन छिटो, सजिलो र भरपर्दो छ।
5: साथै परिवारसँग रमाइलो पल, हनीमुनका अविस्मरणीय सम्झना, सफारी, समूह टुर र हरेक यात्रामा खुसीको अनुभव साट्न पाउनुहुनेछ। त्यति मात्र कहाँ हो र, कर्पोरेट टुर होस् वा शैक्षिक भ्रमण, तपाईँको चाहना अनुसार बनाइदिने विशेष प्याकेजहरू पनि उपलब्ध छन्। अब ढिला नगर्नुहोस्, आजै बनाऊ घुम्ने योजना।
4: सम्पर्क तुलसी होलिडेज टुर्स एन्ड ट्राभल, न्यू रोड, नेपालगञ्ज।
5: सम्पर्क नम्बर 9858535553 र 9812235553। इमेल info@tulsiholidays.com।
6: के तपाईँले आफूले प्रयोग गर्ने तोरीको तेलको शुद्धता चेक गर्नुभएको छ? तोरीको तेलको क्वालिटी तपाईँ आफै चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति तेल आफ्नो हातमा लगाई बाँच्न सक्नुहोस्। शुद्ध तोरीको तेलमा नेचुरल राग सधैँ आउँछ र त्यो नेचुरल राग धारा शुद्ध तोरीको तेलमा सधैँ आइरहन्छ। हो, तपाईँले पनि तेलको क्वालिटी आफै चेक गर्न सक्नुहुन्छ। याद राख्नुहोस्, सबै तेल धारा तोरीको तेल जस्तै शुद्ध चाहिँ नहुन सक्छ। विगत 3 दशकदेखि नेपालीको मुटुलाई स्वस्थ बनाउँदै नेपालको पहिलो एनएस चिन्ह प्राप्त शुद्ध तोरीको तेल धारा, मुटु चाहिन्छ मुटु।
7: सूचना सूचना सूचना, निशुल्क जलन सर्जरी शिविर सम्बन्धी सूचना।
8: नवील निशुल्क जलन सर्जरी तथा परामर्श शिविर सम्बन्धी सूचना।
7: लुम्बिनी प्रदेशको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नबिल बैंक र सुषमा कोइराला मेमोरियल अस्पतालको संयुक्त आयोजनामा नबिल निशुल्क जलन सर्जरी शिविर सञ्चालन हुन गइरहेको छ।
8: मिति 2083 वैशाख 25 गतेदेखि 28 गतेसम्म।
7: स्थान राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दाङ।
8: उपचार हुने मुख्य समस्याहरू:
7: आगोले पोलेर शरीरको भाग खुम्चिएको वा चलाउन नमिल्ने,
8: पोलेका कारण हात खुट्टाका औँलाहरू टाँसिएको,
7: पोलेर टाउको कपाल गुमेको,
8: एसिड आक्रमण वा विस्फोटनमा परि जलन भएका,
7: जन्मजात हात खुट्टामा 5 भन्दा बढी औँला भएका वा पैतला भित्र फर्किएका।
8: विशेषता:
7: वरिष्ठ प्लास्टिक सर्जनद्वारा पूर्ण रूपमा निशुल्क शल्यक्रिया तथा परामर्श सेवा प्रदान गरिनेछ।
8: थप जानकारी वा नाम दर्ताका लागि अस्पतालको प्रशासन शाखामा सम्पर्क गर्नुहोला।
7: विस्तृत जानकारीका लागि 9851350076 अथवा 9841523555।
9: दैनिक रु 197 रु 50 लाखको बिमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता, सूर्य ज्योति सही प्लान,
10: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवनको लागि।
11: नेपालगञ्जको फुलटेक्रामा रहेको सिद्धार्थ विद्या सदन, यहाँ विद्यार्थीहरू पढ्छन् मात्र होइन, सोच्छन्, बनाउँछन् अनि देखाउँछन् पनि। यहाँको कक्षा कोठा भनेको केवल किताबभित्र सीमित छैन, अब तपाईँका बालबालिकाको उज्जवल भविष्यको सुरुवात पनि यहीँबाट गर्नुहोस्। नयाँ शैक्षिक सत्र 2083का लागि भर्ना खुल्ला भइसकेको छ। हाम्रा विशेषताहरू: अनुभवी तथा दक्ष शिक्षकको टोली भएको, आधुनिक शिक्षण विधि र विज्ञान प्रयोगशाला भएको, अनुशासित तथा सुरक्षित वातावरण, अतिरिक्त क्रियाकलापमा विशेष जोड, डिजिटल कक्षा व्यवस्थापन लगायतका सेवा भएको। आजै आफ्नो सेट सुरक्षित गर्नुहोस्। सिद्धार्थ विद्या सदन, जहाँ शिक्षा मात्र होइन, भविष्य पनि बनाइन्छ।
12: सिद्धार्थ विद्या सदन, नेपालगञ्ज। सम्पर्क फोन नम्बर 9585298049।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस तेज।
1: हाल की फिक्र ना भविष्य की चिंता, कोई झंझट ही नहीं जीने में, कोई सपना ही नहीं है।

0: करो, ये राग बंद करो बाबा।
1: ये गाना यहां मत गाया करो, इन दीवारों से टकराकर तुम्हारी दुआएं लौट जाएंगी। इस घर में ये फलने फूलने वाली नहीं है। अपनी दुआएं जाया ना करो बाबा। ये लो।

0: ये चमत्कार बॉबी ने किया है डॉक्टर। इस अंधेरे घर को इसने उजालों से भर दिया है। अब मैं जीना चाहता हूँ।
1: भूखे गरीब की
0: बाबा जी
1: यही दुआ
0: बहुत दिनों के बाद आए।

0: बाबूजी क्षमा करना, भूल हो गई, अब नहीं गाऊंगा।
1: क्यों नहीं गाओगे? जरूर गाओगे बाबा, रोज रोज गाओगे। बाबा तुम्हारी दुआएं इस घर को रास आ गई। गाओ।

0: नाक कान र घाँटीका रोगीहरूको लागि विशेष सूचना।
1: भेरी अञ्चल अस्पतालमा लामो समय काम गरी सेवा निवृत्त प्रमुख कन्सल्टेन्ट ENT विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कुमार श्रेष्ठ र हाल भेरी अञ्चल अस्पतालमा नाक कान घाँटी विभागमा कार्यरत ENT कन्सल्टेन्ट डाक्टर सगुन श्रेष्ठसँग उपचारको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्जमा हप्ताको 7 दिन सेवा उपलब्ध छ। हाम्रा थप सेवाहरू एक्सरे, इन्डोस्कोपी, प्रयोगशाला, अडियोग्राम तथा आवश्यक परेको खण्डमा बिरामीलाई अपरेसनको पनि व्यवस्था छ। विस्तृत जानकारीको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्ज, सम्पर्क फोन नम्बर 081531380, मोबाइल 98580-30479 र 98480-21380।
2: कुष्ठ रोग अभिशाप न होए, इके उपचारो भी संभव है। वही से कुष्ठ रोग के बारे में हम सब लोगन के यहाँ जानकारी पावे जरूरी है।
3: शरीर में यहाँ न खजवाए, छुए से जान न मिले, लाल और खर्रहा दाग दिखाए तो कुष्ठ रोग के शंका कई सका जाते है। असल लक्षण अपनक या तो दूसरे के यहाँ दिखाए तो जुड़ती स्वास्थ्य संस्था में यहाँ जाए के जाँच करावा जाए। सब स्वास्थ्य संस्थान में यहाँ कुष्ठ रोग के दवाई निःशुल्क मिलत है।
2: समय में यहाँ उपचार यानी दवाई किए से कुष्ठ रोग पूर्ण रूप में यहाँ नीक होए के साथ शारीरिक अपांगता होए से भी बच सका जात है।
3: जानकारी रहक चाहे कुष्ठ रोग बीमारी से प्रभावित और उनके परिवार के यहाँ भेदभाव करब कानूनी अपराध हो। साइनिंग अस्पताल INF नेपाल बाके द्वारा जनहित में जारी संदेश।
4: हाय, के गर्ने होला अब? सुगर पनि बढ्दैछ, थाइरोइडको समस्या अझ छुट्टै छ, कति ठाउँमा देखाएँ तर भएन।
5: ए, तिमी यति चिन्तित किन? के भयो फेरि?
4: के भने नि, डाक्टरले मलाई हार्मोनको समस्या छ भन्नुभयो, अनि त्यसैमा बच्चा नहुँदा मलाई झन् टेन्सन भइरहेको छ।
5: ए, अब चिन्ता लिनु पर्दैन, मैले राम्रो खबर सुनेको छु।
4: कस्तो खबर?
5: अब प्रत्येक दिन सुगर, थाइराइड तथा हार्मोन रोगका विशेषज्ञ डाक्टर अल्ताबान राही, MD इन्टरनल मेडिसिन TU, एन्डोक्राइनोलोजिस्ट सर गंगाराम हस्पिटल दिल्ली यहाँ नै सेवा दिनुहुन्छ।
4: ए, साँच्चै?
5: अझै सुन, महिला बाझोपन तथा निसन्तान रोग सम्बन्धी पनि प्रत्येक दिन चेक जाँच तथा परामर्श सेवा पनि उपलब्ध छ।
4: ए, त्यो त झन् राम्रो
5: हो नि। डाक्टर पूनमाचारी MBBS, MD KU, IVF स्पेशलिस्ट इन्डिया र डाक्टर सूरज राज भट्टराई MBBS, MS KU, वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट जनरल तथा ल्याप्रोस्कोपिक सर्जनबाट सेवा पाइन्छ।
4: वा, अब त मलाई धेरै ढुक्क लाग्यो।
5: अझै अरू सेवाहरू पनि छन्। दैनिक ओपिडी सेवा, गुणस्तरीय फार्मेसी सेवा, भिडियो एक्सरे, एक्सरे, ECG तथा सम्पूर्ण प्याथोलोजी सम्बन्धी जाँच सेवा।
4: यो त पुरा प्याकेज जस्तै भयो नि।
5: हो त, अब ढिला नगर, जाऊ आजै गइहाल उपचार गर्न।
4: हजुर, आजै सम्पर्क गर्नुहोस् सुपर पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर BP चोक नेपालगञ्ज, फोन नम्बर 081531860 र 081531861।
5: अब चिन्ता होइन, समाधानको सही ठाउँ सुपर पोलिक्लिनिक।

0: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई।
1: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य शहर केंद्र जाऊ ना, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
0: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
1: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेवा केंद्र प्राली, नेपालगंज छ फुलटेकरा, आर्मी बैरक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98480-2697, 98580-2697 और 98014-83697। बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
0: अम्मा के दवाई करावे के लेकिन समझ में ना आवत है कि कौन अस्पताल माले जाए।
1: कांति आरोग्य अस्पताल है, ये है, काहे चिंता लेत हो। पश्चिम नेपाल के अनुभवी और उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सक द्वारा विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा भी यहाँ उपलब्ध है।
0: ए अच्छा, माने अस्पताल में यहाँ कौन कौन सुविधा है तो?
1: 2400 घंटा इमरजेंसी सेवा, दैनिक ओपीडी सेवा, दूरबीन और लेजर पर विधि से शल्य क्रिया, जले घाव के उपचार करे साथ NICU, PICU, ICU, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर, सुरक्षित प्रसूति सेवा, बाल बालिका और नवजात बच्चन के सामान्य रोग से लेके जटिल रोग तक सब मेर के उपचार भी उपलब्ध है।
0: अस है तो अम्मा के यहाँ आज लेके जाये थे कांति आरोग्य अस्पताल में। यहाँ
1: कांति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज, सब मेर के उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एक छत के नीचे। संपर्क नंबर 081-535-717।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस तेज।
1: हाँ तो श्रोताब का किया जाए कार्यक्रम के एकदम अंत अंतमान हमरे स्टूडियो के घड़ी में 2:56 होगा है। तो साथी अब 4 मिनट बाकी है हमरे 3 बजे में। तो साथी आज के फ़ोन करे वाले साथी हमरे जो फोन मैसेज में सब बताएं सब गलत है। अब हम किका सही किका गलत अब लाउड के जो सम्मार के जो कार्यक्रम आई यही टेम में 1 बजे से 3 बजे तक तो यही क्वेश्चन का रखबे लाउड के कार्यक्रम में। तो आज के कार्यक्रम में विजेता कोई नहीं भवा है। बस यही है कि कार्यक्रम में आप लोग फ़ोन किया गया आप लोग बैठ के कार्यक्रम का सुन दिया गया इसके कारण आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं। कार्यक्रम के प्रायोजक रहे हैं जफरुद्दीन और पप्पू जी ज्योति टेलर के उनका भी उनके पूरे स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कार्यक्रम का देश दुनिया में पटेल हमारे पर प्राविधिक में यहाँ जो हमारे सहयोगी साथी हमारे चंदा जी उनका भी बहुत विशेष विशेष धन्यवाद देते हैं। प्यारा सा गाना अब के बरस बरसों के बाद हो प्यार करने का मौसम आया जीने मरने का मौसम छोड़ते गाना हम संचालक मियाँ जी विदा।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 3 बजेको छ.
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस.

0: होइन, कौशल्या मेमोरियल अस्पताल यही थियो त।
1: ओहो बाजे, अब उता आइन, ठ्याक्कै यता हेर्नुहोस् त पूर्वपट्टि। हाम्रा सेवाहरू: इन्टरनल मेडिसिन तथा फ्यामिली फिजिसियन सेवा, हार्ट जोड्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ सेवा, नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ सेवा, प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा, नवजात शिशु तथा बाल रोग विशेषज्ञ सेवा, छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ सेवा, दाँत बङ्गारा तथा मुख सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा, एकुपंक्चर तथा फिजियोथेरापी सेवा, चौबिसै घण्टा रोड एक्सिडेन्ट इमर्जेन्सी सेवा, चौबिसै घण्टा ल्याब एक्सरे र ख वर्गको एम्बुलेन्स सेवा, एयर कन्डिसन इमर्जेन्सी वार्ड, स्ट्यान्डर्ड वार्ड तथा क्याबिनहरू।
2: हजुर, कौशल्या मेमोरियल अस्पताल, कोहलपुर नगरपालिका, वडा नम्बर 9, हलदारपुर बाँके। सम्पर्क नम्बर 081-414-007 र 98-482-63-399।
3: हाय रे दिदिया, हमार टिहुनी बहुत पीरा थे, बहुत दवाई कराए डाले, नाय ठीक आते।
4: सुनो बहनी, खुशी के खबर, कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में यहाँ मूत्र और दिल गुर्दा रोग के सब ऑपरेशन दूरबीन प्रविधि के द्वारा किया जाता है। और वहाँ पेट संबंधी सब मेयर के दवाई, पित्त थैली के पथरी, अपेंडिस, हार्निया, हाइड्रोसील, बबासीर, फीसर भगंदर जस पुरुष लोगन में यहाँ लिंग, ब्रिये और अंडकोश और मर्दांगनी की कमी हुए समस्या साथ हैं, कैंसर संबंधी सब दवाई ऑपरेशन किया जाता है। और जाना थियो, हाथ गोड़ करिहाव, रीढ़, टिहुनी पिराप, झंझनाहट हो, नस पिराप, झमझमाप, हड्डी टूट फूट भवा है तो दवाई और ऑपरेशन के साथ प्लास्टर बांधा जाता है। महिला लोगन में यहाँ सफेद पानी बहाव, महीनावारी में यहाँ गड़बड़ी, निसंतानता, गर्भवती लोगन के नियमित चेक जांच, बच्चेदानी और स्त्री रोगन के सब मेर के दवाई के साथ ऑपरेशन किया जाता है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता, कंसल्टेंट सर्जन, यूरो सर्जन, जनरल कैंसर, मूत्र रोग तथा मृगौला रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर राहुल मिश्रा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, हार्ट जोड़नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ।
4: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, सुर्खेत रोड, आदर्श नगर, नेपालगंज 10, बांके। वन कार्यालय के नेरेन, पेट्रोल पंप के पछुए। संपर्क नंबर 081-531-000।
6: आमाको उपचार गरौं भनेको कहाँ जाने होला?
7: कान्ति आरोग्य अस्पताल छँदै छ नि, पश्चिम नेपालकै अनुभवी र उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सक द्वारा विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पनि यही उपलब्ध छ।
6: हो र, यो अस्पतालमा के सुविधा छन् नि?
7: 24 घंटा इमर्जेन्सी सेवा, दैनिक ओपीडी सेवा, दूरबीन तथा लेजर प्रविधिबाट शल्यक्रिया, जलेको घाउको उपचार गरिनुका साथै एनआईसीयू, पीआईसीयू, आईसीयू, हाईटेक अपरेशन थिएटर र सुरक्षित प्रसूति सेवा पनि यही उपलब्ध छन्। अझ यहाँ त बालबालिका तथा नवजात शिशुहरूको सामान्यदेखि जटिल सबै रोगहरूको सबै किसिमको उपचार गरिन्छ नि।
6: त्यसो भए आमालाई लगेर आजै जानु पर्यो।
7: कान्ति आरोग्य अस्पताल, सुर्खेत रोड, नेपालगंज। सबै किसिमका उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एकै छानामुनि।
6: सम्पर्क नम्बर 081-535-717। हजुरबालाई लामो समयदेखि कानको समस्या छ, नेपालगञ्जमा भरपर्दो र विश्वासिलो अस्पतालका लागि कहाँ जाने होला?
7: ए, त्यसो भए त चिन्तै लिनु पर्दैन नि, नेपालगञ्जमै रहेको बागेश्वरी कान स्वास्थ्य स्याहार केन्द्र छँदैछ नि। यहाँ त अनुभवी विशेषज्ञ तथा वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिकबाट हरेक दिन कान परीक्षण गरिन्छ। त्यति मात्र कहाँ हो र, यहाँ त लामो समयदेखि कान पाकिरहने जीर्ण रोग, काने ढुसी, कान चिलाउने, कान कम सुन्ने, कान डम्माउने बिरामीहरूको उपचार तथा परामर्श र लामो समयदेखि कान पाकिरहँदा कानको जालीमा प्वाल परेको, कान हड्डी खाने रोगको शल्यक्रिया अपरेशनबाट उपचार गरिन्छ। साथै कान कम सुन्ने बिरामीहरूका लागि कानमा लगाउने सस्तोदेखि महँगोसम्मका विभिन्न मोडेलका कानका मेसिन, हियरिङ एड बिरामीहरूको चाहना अनुसार उपलब्ध गराइन्छ। बिटिई, सिआइसी, आरआइसी जस्ता मेसिनहरू पनि यही उपलब्ध छन्।
6: ए, त्यसो भए हजुरबालाई त्यहाँ लगेर उपचार गराउँदा स्पष्ट सुन्न सक्नु होला त?
7: अवश्य, समयमा उपचार गरेपछि धेरै सुधार सम्भव हुन्छ।
6: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य स्याहार केन्द्र,
7: नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, वडा नम्बर 6, फुलटेक्रा, आर्मी ब्यारेक सामुन्ने, राप्ती रोड, बाँके। सञ्चालक पूरण चौधरी।
6: सम्पर्क नम्बर 98-480-20-697, 98-580-23-697 र 98-014-83-697।
7: बहिरोपण निवारण कार्यक्रममा सहभागी हौ, नियमित कानको जाँच गरौँ।
8: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाखको बीमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता। सूर्य ज्योति सही प्लान,
9: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवनको लागि।
10: Back to back, back to back.
11: In this song,
10: on. Stay tuned.

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: भने पछि साइकल लिएर गयो।
1: साइकल लिएर जाँदा जमाना उहाँ मोटरसाइकलमा पुगिसकेछ। एउटा मोटरसाइकल किनिदेऊ, बुहारी ल्याएर देखाइदिन्छु। ला
0: किनिदेऊ ल।

0: एक्सट्रिम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ.
1: एक्सट्रिम इनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस.

0: ओए रजनी, ओ वहाँ बासक नंबर लट्ठी बा, देखाओ तो, हत्ता देखाओ तो।
1: मुर्गीन दाना देना डाला मैं, काकर लट्ठी खा देती अब ना।
0: एक तो तपा बाका मुर्गी ना खा रखे, लट्ठी से डुरेले से बक्सा की, आनो हरी छत्ता।
1: तापन घिसका ही चलाई नहीं हुई थी, नहीं तो अमन दस से आकर, बेन घर भीतर आए लागी कल से भगई दी।
0: पारक भीतर पेट का मुर्गी मुआडी और खाड़ी कहीं का भगाई खोज लखो का।
1: आरम कीड़ा फटिंगा मुँह साफ सीधे निचा कर कहीं का फलाम को जारी लगा ले बात तब पा मुर्गी खेती बुगाई नहीं देखी बेन अपना ना दाखी दूर रहना
0: हो बिना तो क्या करना हो तब पा देखती कि डर लागा लगना रही था देव तब पा तो अपन घूम का बारी वोट कर गिनता
1: हमरे के सापन से डरे ना नहीं होनी मुकर थे अमन से डरे था यदि क्यों जान अनजान में चले लगी पति रक्षा करत लाग वह अपन बचाव करत लाग साम दस ना कर था
2: सापन से दूर रही सापन रीस नी लगाई वा नी जिसके साप मने देख डरे था निचलाख दूर रहे साप नि डस्ट तर मुक्र खैना खुवाज बाहिर निस्कल बेला म घाँस काटा बेर ख्याल बेर ड्याङ्ग बेर छुबेपछि मनैमही मारकबाट कना समझ पट्टी रक्षा गर्न क्रममा साप दस लाग्रछ मनै सापन व्यक्ति कि मारक लाग्रछ ओसी कर बेर फेर साप दस लाग्रछ
3: सर्पदंश सम्बन्धी भर पर्दो हो सही जानकारी प्राप्त गर ओ लङ्घक सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाइक लाग आधिकारिक वेबपेज www.snakebitenepal.org मा हेर सेटिथा
4: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
5: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम टेक अहिले ठीक 7 बजेको छ
6: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: पटक बैंक अफ द इयर 2024 र 2025 को सम्मान सिटिजन्स बैंक विश्वास को नाम सिटिजन्स बैंक हजुर को प्रगति को सहयात्री।
1: नाक कान र घाँटीका रोगीहरूको लागि विशेष सूचना।
2: भेरी अञ्चल अस्पतालमा लामो समय काम गरी सेवानिवृत्त प्रमुख कन्सल्टेन्ट ईएनटी विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कुमार श्रेष्ठ र हाल भेरी अञ्चल अस्पतालमा नाक कान घाँटी विभागमा कार्यरत ईएनटी कन्सल्टेन्ट डाक्टर सगुन श्रेष्ठसँग उपचारको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्जमा हप्ताको सातै दिन सेवा उपलब्ध छ। हाम्रा थप सेवाहरू एक्सरे, इन्डोस्कोपी, प्रयोगशाला, अडियोग्राम तथा आवश्यक परेको खण्डमा बिरामीलाई अपरेसनको पनि व्यवस्था छ। विस्तृत जानकारीको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क फोन नम्बर 081531380, मोबाइल 9850303479 र 9840821380।
3: अब सुन्नुहोस् श्री स्टील्स रेडियो कथा भाग दुई।
4: शर्माजीको परिवार सबै डराएका हुन्छन्, तर त्यति ठूलो भूकम्प आएर हल्लाएको त्यो घरलाई केही हुँदैन। यसरी नै दिन महिना वर्ष बित्दै जान्छ, अनि एक दिन फेरि अचानक ठूलो भूकम्प आएर त्यो श्री FE550D बनाएको शर्माजीको घरलाई झन धेरै हल्लाउँछ।
3: रेडियो सुन्दै गर्नुहोस्, अब बाँकी कथा अर्को भागमा। श्री FE550D सर्वोत्कृष्ट भूकम्प प्रतिरोधक स्टील।
5: ओइ रजनी, वहाँ बासक नम्बर लट्ठी बा देखाउ त, कस्तो लेखाउ त।
6: मुर्गिन दाना देना ब्याला म काकर लट्ठी खा दे दिअब न।
5: एक तो तपा बाका मुर्गिन फार छे, लट्ठी से जुड़ेले से बक्सा की आनो हरी छट त।
6: तापन घिसकाई चलाई नहीं हुई थी, नहीं तो अमन दस स्याकर, बेन घर भीतर आई लागी कलते भगेबी।
5: पारक भित्र पैट का मुर्गी मुआडी वो खाडी कहीं का भगाए खोजलक हो का
6: आरा में कीड़ा फटिंगा मुर साफ सिर निचा कर कहीं का फलाम को जारी लगा ल पाट तब पा मुर्गी खेती बुगाई नहीं से की बेन अपना ना दाखी दूर र बिना
5: ओ बिना ता का करना हो तब पा देखती की दर लागा लगना रही था देव तब पा ता अपन ना घूम का बारी वो कर लिंटा
6: हमरे के सापन से डरे ना नहीं बोली मुखरत ही अमन से डरे था यदि क्यों जान अनजान में तलई लगी पोती रक्षा करक लाग वह अपन बचाव करक लाग काम दस ना कर था
7: सापन से दूर रही सापन रिस नी लगाई वा नी जिसके साप मने देख डरे था नी चलाख दूर रहसे साप नी डस्ट तर मुकुर खैना खाज बाहर निस्कल मेरा म घास काटे बे खाले बे ध्यान बे छुबे रहसे मने वही मारक लाग बाटा कना समझ का पट्टी तक छकना क्रम म साप दस लाख रठ मने सापन व्यक्ति की मारक लाग रठ उसी का कर बे फिर साप दस लाख रठ
8: सर्पदंश संबंधी भर पर्द हो सही जानकारी प्राप्त कर ओ लंघक सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाक पत्ता लगाई लाग आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में हेर सेटा।
9: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्रसँगको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेसनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।

0: California.
1: Extreme energy drink.
2: व्यावसायिक कृषि पद्धति अपनाएकला किसान हुकरन कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तालिम केन्द्र खजुरा बाँके के विशेष अनुरोध
3: कृषि क्षेत्र म व्यावसायिक पद्धति अपनाई हो कृषि क्षेत्र म व्यावसायिक पद्धति अपनाई हो आयमूलक व्यवसाय से

0: उही बमोजिम व्यावसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलम्बन करी ओकराई एकल प्रयास से कृषि क्षेत्र में व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में करे निसेकना हुईले ओहर से हमरे निजी और सरकारी सब सरकार वाला एकजुट होके अपन अपन भूमिका निर्वाह कई के समन्वय सहकारिक लाग प्रयास करी वो कराई
1: थप आवश्यक सर सलाह वो जानकारी के लाग लगभग संघीय वो प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा देना कार्यालय केन्द्र प्रयोगशाला निर्देशनालय वो स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में संपर्क करेक लाग अनुरोध बा
0: कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग और तालीम केन्द्र खजुरा बांके।

0: भएका,
1: जन्मजात हात खुट्टामा पाँच भन्दा बढी औंला भएका वा पैताला भित्र फर्किएका।
0: विशेषता,
1: वरिष्ठ प्लास्टिक सर्जन द्वारा पूर्ण रूपमा निशुल्क शल्यक्रिया तथा परामर्श सेवा प्रदान गरिनेछ।
0: थप जानकारी वा नाम दर्ताका लागि अस्पतालको प्रशासन शाखामा सम्पर्क गर्नुहोला।
1: विस्तृत जानकारीका लागि 9851350076 अथवा 9841553555।
2: व्यावसायिक कृषि पद्धति अप्नाएकला किसान हुक्रन कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तालिम केन्द्र खजुरा बाँकेके विशेष अनुरोध।
3: कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक पद्धति अप्नाई हो आयमूलक व्यवसाय से आत्मनिर्भर बनी हो बनाई। कृषि पेसा है मर्यादित बनाएक उद्यमशीलता विकास कैके रोजगारी सृजना करी हो कराई।
2: कृषि व्यवसायमा तुलनात्मक विश्लेषण कैके आमदानी ऐना व्यवसाय छनौट गरी खेती व्यवसायके नियमित हर हिसाब राखके विश्लेषण कैना बानी बैठाई।
3: बजार हेरके खाली उत्पादन योजना बनाई व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तयार कैके लागू करी।
2: सफल उद्यमी बनियो व्यवसाय है निरन्तरता दि आगे बढाई हो बढाइक लगाई। कृषि प्राविधिक विज्ञ हुकरन से नियमित सरसलाह हो सुझाव ली वो उहे बमोचिम व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करी ओ कराई। एकल प्रयास से कृषि क्षेत्र में व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में करे निशेकना हुईले ओहर से हमरे निजी और सरकारी सब सरकार वाला एकजुट होके अपन अपन भूमिका निर्वाह कैके समन्वय सहकारिक लाग प्रयास करी वो कराई।
3: थप आवश्यक सरसल्लाह वो जानकारी के लाग लगभग संघीय वो प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा देना कार्यालय केन्द्र प्रयोगशाला निर्देशनालय वो स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में संपर्क करे लाग अनुरोध बा।
2: कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तालिम केन्द्र खजुरा बाँके।

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी